0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: निर्गम भन्ने महाराजले छेपारो भइरहनु निर्गम भन्ने महाराजले छेपारो भइरहनु के को दुख के को सुख के।